0: से थे बोले साहब बोला सारे माचा शहद चल माई तेरा मासरंग ए फुतर पर मन अबू तालिब से तो पोले साहब बोला सारे माचा शहद को
1: एंगले एंग बोमे
0: या रा
1: बरनगा ला

मिला गुरुंग बने पास नाय टुका ए पिंडा चन भाई तेरा मसर एपू कला बन कुछ तेरा सुला कर ए पिंडा चंद्री नखर अम्बुन का रो।